सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम, समझिए वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोलकर गमाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही, विजाति आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा, किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन ही बुद्धिमानी है, मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सोमिल बात न चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं होए ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, राम झरोखे सब

0: दे,
1: देगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तो ए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर, अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, नहीं होगा नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा, हो ही जाता है भाई। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित उचित समझकर बस करते चले जाएंगे, यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है, लगती यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दिनों करते डार। ये तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या, ऐसा तो यही

बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो, सपने हूं नहीं देखूं पर दूसरा। श्री व्यास जी के वचनों दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संगतज यह भक्ति की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका विवेकी कहा। अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है जो भली गए बुरी छाड़े। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गए सब छाड़े। हम जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार न उत परमार्थ, और बीच ही बीच जन्म गए। कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु, ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचाए, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। इसी को मैं कुछ देर, जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई। सबकी उपयोग क्या लेना है और कितना लेना है ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी नहीं थी, अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल, बात जुगल बिहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजा। अपने भाव के अनुकूल हैं जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कह रहे हैं उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रिया लाल की जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस होना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद इभाति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब ठीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करे, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करे। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन,
एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी, हाँ है एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्ज घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वही मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब ढें और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। राका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक भोजन की भी व्यवस्था नहीं, नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है, ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये ले नहीं, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते। राका माका कहने लगे अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते तो पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसका भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी का, ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। भी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है, और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे,

शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें। आपके ठाकुर जी आपके हैं, आपके ठाकुर जी हैं, उन किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कह आचार ना करें, प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नहीं। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु नाम तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको, वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहां कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अस्तु निवेदन करनी हो, जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के धन

कह रहे रांधे अन्नविषयक कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जा, को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, समय सुख एक, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है, प्रभु का है। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पात भी नहीं कर सकते। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे, हाँ जब आप रहा है तो जहां तक संभव हो सके। और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वर कार्य पहले सिद्ध होगा उसका नहीं हो सकता है, उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो झूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे ने प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। जी बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाएगी, ही मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है, बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी बोली सखी गाती है जय ही प्यारी लागो ऐसी

कर लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें जय विधि तोहे अति प्यारी लागो। इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है न बने, इसलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो, आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्व देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी है

और मुझे लगता है वो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, मानप्रद आप अमानी, यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मानप्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचादानी में मर जाता है, प्रेम नहीं मिला हमें, सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा, आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए बांटिए, सम्मान करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है, और समय किसका सम्मान करता है जो समय का सम्मान करता है। मैं आपको समय का सम्मान क्या है, जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है, प्रसन्नता का, को मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए। और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं कि कौन भला करता है बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है। न कहिए न सुनिए, और संत हो फिर तो नानक कहते बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, ना कहिए ना सुनिए, कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए, मौन रहना भी। दुर्दास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन परवार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए प्रसाद का जल दिया नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध। कभी भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किस आए थे, उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ब्रह्मादिक औरन की कौन चलावे, ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक जो यह बात मन में न आवे, कह रहे तीन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते उन्हें भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे छूटे। जो स्नेही भक्त हैं
तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साध है मेरे मत काज सुधी को, और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समाज। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जपियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज समात। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरण है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं। ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है। द्वारिका लीला भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो है ते सब नीके हैं, सब भले हैं। घट को उनाई, कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ कर्ता है। जात पात

0: अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
2: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
3: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय सकृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कट होता हूँ मैं, आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि $2000 का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं। सबसे आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटीज विल गिव यू द। इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल, लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू, इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है, मैं बताता हूं। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए सबसे आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते। अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं। जानते हैं क्या? लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई। सब किया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, हमने दुनिया देखी है, ये भी नहीं चलता। ले आया आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत तक पहुंचाया, ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सके। आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो मैं आज आपको दे रहा हूं, स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली। जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 5 रही लोगों में से है। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र है, ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के साथ पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया, और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। अब मैं आपको ये प्रिंसिपल देना, इफ यू आर अ टीनेजर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए नो प्रॉब्लम, मुझे क्विकली जल्दी फेल होइए मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100%। अरे आप बोलेंगे सोनू सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो, जो आपने का एक ही तरीका है, क्या, जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, फेल हो जाइए जल्दी फेल होइए बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेल एंड बिलियनियर, एजुकेट योरसेल्फ, निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए। आखिर मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, दुनिया फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए, 300 से ज्यादा फ्री वीडियोस जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कह रही हूं, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है, मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए, नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे, और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मेरी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा, और 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते। Become a self-learner. Learn about time management, how to talk, हर टॉपिक पर आपको मेरे चार आगे बढ़े। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना, प्यार्थ पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है, आपकी जो शुरुआती सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो ये सिर्फ आप बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाता काम करते हैं, ये आपको लाइफस्टाइल देगा, यह आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल, क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ऐसी की तैसी लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सात सात आठ आठ घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट? दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फ्रेंड का गेम मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर। सराउंड योर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट, हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी, वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा सेशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो, लेकिन एनर्जी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बीइंग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: अब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

ईशाना सुरई के साथ स्वागत XFM पर, मैं हूँ आरजे जी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर, ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। तारीख का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी रहो। A road safety campaign by Radio Maharani 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी उसकी तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की।
2: We are sorry, पर आज हम हाथ जोड़ के बात देते हैं जो हमारे पास है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे इंशी आपके साथ। तो भाई टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर वेदर की बात करूँ ना तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज रहने वाला है 32 डिग्री। इसके साथ अगर मिनिमम की बात की जाए तो 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 19 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी रहने वाली की प्रेडिक्शन है, यानी कि बारिश तो होगी, लेकिन बारिश से बचने के लिए ना अपना ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: अरे होश दिल चैन।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी बदल सकती है। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ हम इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तुम्हें कलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आई लीव भी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: तो साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: डियर इंसेंडर्स, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, कानून के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक ट्रिप भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अगर मैंने भी सुबह सुबह ये बोला ना कि पिज्जा बर्गर फ्राइज है गोले पे, आई एम डैम श्योर आपके मुंह में ना पानी आ गया होगा ये सुन के ही। हमेशा मैं फिटनेस वाले फंडे लेकर आते हैं, और ये दिन की अगर मैं बात करूँ तो जब हम अपने फेवरेट चीट मील को थोड़ा सा गिल्ट फ्री होकर एंजॉय करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना एक बैलेंस बना रहता है, एंड बैलेंस है हैप्पी हार्मोन वर्सेस स्ट्रेस। तो भाई आज का दिन ये है जो बहुत ही शिद्दत से अपनी डाइट मेंटेन करके रखे हुए थे और बस अपनी फिटनेस के ऊपर इस तरह से ध्यान दे रहे थे कि बॉइल्ड फूड के आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जबरदस्ती ये सारा बॉइल्ड फूड वगैरह खाकर बस आपसे नफरत करने लगेगी, तो उस नफरत को आज प्यार में बदलने का मौका है आपके पास। तो थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हेल्दी वे में। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप लोग सब कुछ जंक ही खाइए, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आज आप हेल्दी फूड के पीछे के फन फैक्ट की बात करूँ ना, तो जंक फूड का टेस्ट हमें इसलिए इतना पसंद आता है क्योंकि इसमें सॉल्ट, शुगर और फैट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ये खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। सो माय डियर लिसनर्स, लाइफ हो या डाइट, बैलेंस ही सबसे टेस्टी रेसिपी है। तो आज अपनी फेवरेट ट्रीट का मजा लीजिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा हेल्दी लाइफस्टाइल तो से बनता है, तो अपनी आदतें भी अच्छी बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं।
1: काम तो महंगा खतरा भाई, हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी खतरे हो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। साइबर सिपाही,
3: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
4: डियर अननोन सेंडर्स, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: तेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचा चुका है। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
4: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
5: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का जवाब पता ही नहीं चला।
4: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच पर मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता, इसलिए किसी भी मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन 0.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन

कभी आपने ये सोचा था कि जी सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और पर्पस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो जापान में ग्रैंडमा ऑन रेंट, ये एक आपके दिल को छू जाएगा। जापान में एक ऐसी सर्विस काफी चर्चा में है जहाँ लोग ग्रैंडमा ऑन रेंट हायर कर सकते हैं, यानी यहाँ 60 से 90 प्लस साल के एक्सपीरियंस ग्रैंडमदर लोगों की हेल्प, हाउसहोल्ड काम करने में, लाइफ एडवाइस देने में और कभी कभी बस किसी की बात सुन लेने में। तो चलिए फिर से कहानी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट अपनी फैमिली से दूर रहता था, हॉस्टल की लाइफ, बाहर का खाना और बिजी रूटीन। सो ऐसे में एक दिन ग्रैंडमा ऑन रेंट, तभी ग्रैंडमा उसके घर आई। ग्रैंडमा ने उसके लिए घर जैसा खाना बनाया, उसकी बातें सुनी और जाते जाते बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशंस नहीं, अपनापन चाहिए होता है। और सो कहना तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी हमें कनेक्टेड रख सकती है, लेकिन हमारे ग्रैंडमा जैसा प्यार और एक्सपीरियंस हमें नहीं दे सकती, जो कि हमारी जैसी जनरेशन के लिए प्राइसलेस है। क्योंकि अगर बात करें ना आजकल की फैमिलीज की, तो इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। सो यहाँ पर सोचेगा जरूर, अगर इंडिया में भी ऐसी सर्विस शुरू हो तो सबसे पहले आप किस काम के लिए एक दादी या नानी को बुलाना चाहेंगे ये जरूर बताइएगा, और बताने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे, और बताइए नानी या दादी किसका प्यार आपको चाहिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.1।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं, एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है।
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन 0.6 FM कुछ हटके।

0: और आपका KYC अपडेट्स पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर, अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों
2: का। सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चालाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथों का खास ध्यान रखें, किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई सर्च नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM। तो अब

आश्रम एक सवाल के साथ आई हूँ, और सवाल ये नहीं है कि गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पी या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मैं भी आपके साथ मैंगो कोई भी फ्लेवर रख दूँ आइसक्रीम का, तो आप फटाफट से जाके कौन सा फ्लेवर चूज करेंगे? अब आप बोलेंगे यार अंजलि, कभी जंक फूड कभी आइसक्रीम, आखिर कहना क्या चाहती हो? तो भाई कहना ये चाहती हूँ, जुलाई मंथ है नेशनल आइसक्रीम मंथ, यानी कि इस पूरा मंथ ना आप कोई ना कोई फ्लेवर की आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रख के। तो मैं इस मंथ की बात करूँ तो ये मंथ की खाने के लिए, और ऑनेस्टली इससे बेटर मंथ और हो भी नहीं सकता जब हम आइसक्रीम की बात करते हैं, बिकॉज गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो मूड को चेंज करने के लिए ना आइसक्रीम तो बनती है। और जब आइसक्रीम की बात हो ही रही है, तो क्या आपको सबसे पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर में से एक है? और बात की जाए कुल्फी की, तो कुल्फी आज भी इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो देखा, ये कुछ ओजी फ्लेवर्स हैं जो कभी नहीं बदल सकते, जो लोग कहते हैं ना कि बोर हो जाते हैं, अब कभी बोर नहीं होंगे, ये एवरग्रीन फ्लेवर्स है। यानी कि कुछ खुशियाँ बहुत महंगी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आइसक्रीम और अपनों का साथ ही काफी होता है। तो आज नेशनल आइसक्रीम मंथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपने फेवर, हाँ अगर हो सके तो अपने फैमिली या लव्ड वन के साथ जरूर एक आइसक्रीम डेट पर जाइएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार से ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही या
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: किया है?
1: अर्ज अर्ज
2: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह,
0: तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी जिलायक,
2: चुप रहो, आगे सुनो।
0: मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
1: अच्छा,
0: बस मेरी शायद फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे, बाय। हेलो,

जिंदगी में जब बोर्डम आ जाए ना तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। ये कितनी बार सुना है ना हम लोगों ने, ये लाइन ना हम सब ने अक्सर सुनी है और डेली सुनते भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हम जुलाई में आ चुके हैं और जुलाई को ना नेशनल बोर्डम मंथ कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बोर्डम हमेशा बुरी चीज नहीं। यही बताने के लिए आपको आ गई हूँ और साथ ही कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से, एक लड़का हर वक्त फोन में बिजी रहता था। एक दिन उसका फोन डिस्चार्ज हो गया। पहले तो वो बहुत बोर हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसने हाथ उठाया और फैमिली के साथ बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। शाम तक उसने कहा, आज का दिन बोरिंग नहीं, सरप्राइजिंगली बेस्ट था। जो उसने कभी सोचा भी नहीं था ना, एक फोन बंद होने के बाद ना उसके साथ बहुत सारी चीजें हुई। इसलिए कहा जाता है कि बोर्डम के पीछे ना एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है, कभी कभी जब दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिलता है ना, तभी नए आइडियाज बाहर आते हैं। यानी इस बोर्डम से क्रिएटिविटी, हॉबीज और सेल्फ डिस्कवरी की शुरुआत भी होती है। सो माय डियर लिसनर्स, कभी कभी खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, और अगर आपको लगता है ना कि आप फोन के बिना बोर हो जाएंगे, तो बस अपनी हॉबीज पर काम करना शुरू कर दीजिए, नए दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए, और हाँ, नए बोर्डम मंथ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, एंजाइटी कीजिएगा, सेल्फ डिस्कवरी। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.67, मिलता है म्यूजिक ब्रेक।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता आज उन्हें
2: क्योंकि
1: उनका साथी हमारा सुकून है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चालाकी से कौन पे मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इंसान ना करे। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अब तो अर्ज किया है,
1: अर्ज अर्ज
0: अभी करते हैं, सुनो
1: इरशाद।
0: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं, हर तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
0: भूलते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: हेलो, सुन के जाओ।
3: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। English,
4: English. यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: रेडियो माही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ। और हाँ,
2: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ।
2: तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
5: संघ द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके,
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन
3: हटके
4: मलाकी की आशना।

स्वागत है आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन्स की, तो हम सबकी नीड है। बेसिकली स्मार्टफोन स्मार्ट है, पर थोड़ी सी केयर और भी स्मार्ट बना सकती है आपको। सो आज यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि किस तरह के स्कैम, इन सभी स्कैम से बचना है। अगर बात की जाए एक रीसेंट के इंसिडेंट की, तो मुंबई से एक रीसेंट इंसिडेंट आया जहाँ पर 78 ओल्ड वुमेन के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। एंड ये बहुत ही शॉकिंग केस रहा, बिकॉज जहाँ हैकर्स ने रुपए की ठगी कर ली, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़े अमाउंट की ठगी हुई है। एंड अक्सर ऐसा ही होता है, आपको पता भी नहीं चलता और एक क्लिक में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। सो आज सिर्फ स्कैम के इंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस ऐप, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो अपने फोन पर या फिर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो, तो बहुत इजी चांस क्रिएट हो जाता है आपका अकाउंट खाली होने का। एंड सेकेंड थिंग, फेक कॉल्स और OTP ट्रिक्स। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो स्कैमर्स हमें जाते हैं। फोन एक्सेस लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच जाना बहुत ही इजी हो गया है आज का स्कैमर्स के लिए। सो अपनी पर्सनल डिटेल्स इतनी पर्सनल रखे कि कोई और उसका एक्सेस ही ना कर पाए। और अगर बात करें स्कैम की, सबसे पहले जो भी अननोन लिंक्स आपको मिलते हैं कभी भी उस पर क्लिक ना करें। सेकंड थिंग, OTP पिन या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। इसके साथ ही हमेशा अपने फोन में स्क्रीन लॉक और सिक्योरिटी अपडेट जरूर रखें। अपने फोन में हमेशा ट्रस्टेडी ऐप पर पूरी तरह से बिलीव ना करें। सो इसके साथ आज एक स्पेशल रिमाइंडर भी लेकर आई हूँ, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें स्पेशली साइबर अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये स्कैमर्स उन्हें इजी टारगेट बनाते हैं। सो बस यही कहना चाहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स दे। सो माय डियर लिसनर्स, ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। ब्रेक के बाद

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस कैंप के चर्चे हर जबान पर है।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगे पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले इफेक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर स्टूडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: अर्ज किया है?
1: अर्ज
5: अभी करते हैं, सुनो।
1: इरशाद,
5: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह,
5: तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी जिलायक,
5: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
5: बस मेरी पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारे शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
5: अरे, हेलो।

0: की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: वीडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे रिवर्स टाइट रखना, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आप सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लिए भी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशिका आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो मैं जापान का मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर जापान के टोक्यो में एक ऐसा कैफे है रोबोट इन, असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि इन रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं वो लोग जो पैरालिसिस या सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाते। यानी कि ये जो लोग हैं रोबोट्स के थ्रू कस्टमर से बात करते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फूड सर्व करते हैं। यहाँ पर ये कैफे ने ये दिखा दिया कि बॉडी की लिमिटेशन उनके सपनों के बीच नहीं आ सकती। तो चलिए कहानी हो जाए, एक कस्टमर आज आप कैसे हैं? रोबोट के पीछे बैठे ऑपरेटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ और आज काम करके बहुत खुश हूँ। उस पर कस्टमर को समझ आया वो सिर्फ कॉफी नहीं, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस देखा अपने। असली टेक्नोलॉजी वो नहीं जो सिर्फ काम आसान करे, असली टेक्नोलॉजी तो वो है जो जिंदगी को बेहतर बना दे। और सोचेगा जरूर कि अगर इनोवेशन का यूज हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो तो दुनिया से भी एंजॉय कीजिए। पैरास ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर को वानाबी से बचा के रखो। हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं और तुम शेयर लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा। रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो। पासवर्ड 123 मत लिखना। ये देख के इतना आसान क्या? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ
2: पापा, रोमांटिक सीन
1: इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील करो।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: Jesse.
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
2: इरशाद,
1: स्कैम वाले नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पर?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया। हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश
1: का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस कैंप के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चालाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल से पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले इफेक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंप की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

सो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बजे आई थी, हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: शुमार को वनरी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेयर लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेट 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो अर्ज होता है अर्ज
3: कर रहे हैं आप। स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
4: नहीं कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं रेंट पे है, ईएमआई पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी
3: जब का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो कहाँ चली?

0: 99.6 FM
1: कुछ हटके
2: डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घुल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गो नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ 10:10 हो रहे हैं और इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है। बात की जाए जहाँ AQI की, AQI 100 से नीचे एग्जैक्टली आने को तैयार नहीं है। बारिश थोड़ा सा मौसम जरूर साफ कर जाती है, जहाँ अभी भी नेक्स्ट वीकेंड तक यानी कमिंग वीकेंड तक बादल छाए रह सकते हैं, कभी आंधी तो कभी धूप, कुछ मौसम ऐसा अदलता बदलता ही रहने वाला। बाकी शहर से जुड़ी बहुत सी चर्चा आपसे लेकर के आए, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाता कुछ बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: हो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहे हैं आप सुनो तो
0: इरशाद
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया
2: तुम्हारे नंबर पे
1: हाँ जी
2: अच्छा
1: और उन्होंने पूछा क्या
2: क्या
1: ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा उन्होंने ये बताया
2: क्या बात कर रहे हो
1: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है
2: अच्छा
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है
2: ओ पागल तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है
1: नहीं नहीं रेंट पे है ईएमआई पे
2: अब तुम बोलते रहो हम सबको बता कर आते जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार
2: बाय
1: सुनो तो कहाँ चली
2: बाय

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेबर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, अब जैसे कि आप सब जानते हैं 30 जुलाई लेके 11 अगस्त तक आगरा कैनाल रूट बंद रहने वाला। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के लिए रूट पूरा तैयार किया गया है, तो आप लोग अपनी यात्रा 30 जुलाई से लेकर के 11 आगरा कैनाल रूट से डाइवर्टेड रूट्स पर ही जाएं, ताकि आपको यहाँ आने के बाद फंसना ना पड़े, बिकॉज सारे रूट्स बंद मिलने वाले। इसलिए 30 किलोमीटर के रूट पर लगभग 21 नाके होने वाले हैं, जहाँ सड़कों की मरम्मत की जा रही है ताकि कांवड़ भी आने जाने में दिक्कत ना हो। तो कांवड़ यात्रा के दौरान सारी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पूरे शहर भर की अगर बात की जाए, जो रूट रहने वाला है शहर भर से, तो आप लोग प्लीज बात करें 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कैनाल का जो आगरा कैनाल रूट है ये बंद रहने वाला है, डाइवर्टेड सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए रहेगा। तो प्लीज अपनी यात्रा उसी हिसाब से डिसाइड करें।

0: ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।

चलाकियां सोना दिया मुंडा वेख पौंदी पौन हासियां गोला मुके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया उनकी गलियों से। यहाँ दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब ट्रैफिक रूल्स के बारे में। जहाँ की ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बहुत जगह कभी स्कूल्स में कभी कॉर्पोरेट्स में जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए, इसलिए तो कहा जाता है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ट्रैफिक लाइट को फॉलो कीजिए, रॉन्ग स्पीडिंग ना करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, हाईवे पर यू कार पार्क ना करें, जब इमरजेंसी में पार्क करने भी पड़े तो प्लीज पार्किंग लाइट ऑन करके और जहां पे थोड़ी रोशनी दिखे वहीं पार्क करें। ये रूल्स जो हम लोगों के लिए ही बनाए गए हैं और हमारे आजू बाजू चलने वालों का ख्याल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, तो प्लीज ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि चालान कटेगा, इसलिए कि सबकी सुरक्षा, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा भी हमारे आते हैं। हमारी बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
0: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कैरेले आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेद छुट्टी। यहाँ मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्मल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
3: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन।
4: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरले आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650685% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरले आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों, सिनेमा की गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करते हैं। सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार, तो कुछ नई कहानियां, ट्रेलर, टीजर, नए पोस्टर, तो कुछ न्यू लुक। वहीं आपको बताऊंगा सिल्वर स्क्रीन से लेकर के ओटी प्लेटफॉर्म तक की कैसे कहानियां, कौन से पायदान पर हैं, किसको मिला अच्छा खासा प्यार, तो कौन से स्टार्स की एंट्री लगी भांसू। हिंदी पट्टी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री तक का तहलका, तो कहीं होगा पंजाबी गानों का धमाल, तो कुछ होंगी बातें भरपूर कहानियों की। ये सारी चर्चा सिनेमा के गलियारों से आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले, सुनाओ बेटा कुछ धमाकेदार से गाने।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट रहा हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेश सिनेमा के गलियारे से एक और बढ़िया कहानी के बारे में बात की जाए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सफेद सागर के टीजर और उसमें दिखाए गए कारगिल वॉर एंगल, जहां बात की जाए इस कहानी के बारे में, तो ये सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मिशन पर आधारित है, खासतौर पर गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन। कहानी में फाइटर पायलट्स की तैयारी, ब्रीफिंग्स, स्नो क्लैड कारगिल चैलेंज सब कुछ दिखाया गया। जैसे इस कहानी में सिद्धार्थ, जेमी शेगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा और तारक रैना को पायलट्स लीडरशिप मेंटर रोल्स में। टीजर रिलीज हुआ, इसको अच्छा खासा प्यार दिया गया, जहां कास्ट और क्रीम में दिया मिर्जा, प्रोजक्ता कोहली, आदिल हुसैन स्टार्स भी नजर आ रहे हैं। ऐसे कहानी को 7 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शेष भक्ति से जुड़ी है, इसलिए 15 अगस्त के आसपास रिलीज की जा रही है कि इस कहानी को और अच्छा प्यार मिलता नजर आने वाला है। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्य से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ जो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अब
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्ले। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फिल्मी गलियारे से, जहाँ जन नायकन को और कई कहानियों की सेंसर अनसर्टेनिटी के बाद जन नायकन को मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 183 मिनट्स की एक कहानी जो कि सिनेमाघरों में बहुत जल्द

ऐसी कहानी जो इसके बाद शायद हमें कहानियों में तो नहीं देखने को मिलने वाले, सिनेमा की गलियारों में लास्ट शूटेड स्टोरी को लाना जरूरी था। अब जन नायकन में थलापति का किरदार कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है आप सब जान फॉलोइंग, बाकी ऐसी चर्चा करेंगे सुपर एटक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं।
1: हद पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके की जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट रहा हूं लेवर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं दिशा पचानी के हॉलीवुड जर्नी के बारे में। जब हॉलीगार्ड्स सागा द पोर्टल ऑफ फॉस प्रोजेक्ट पर बातें चल रही वहीं हॉलीगार्ड सागा की अगर बात करें सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर कहानियां एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत मानी जा रही जिसमें दो फैक्शंस यानी कि स्टडी गार्ड्स और हॉली गार्ड्स के बीच संघर्ष दिखाया जाएगा। वर्ल्ड के सेट की है जहां दिशा पचानी का किरदार जेसिका होने वाला। दिशा का रोल और पहली इंटरनेशनल एंट्री दिशा के फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक इस कहानी को लेकर के जहां एक्सपीरियंस में थ्रिलिंग और तालुफ सीन्स हमें देखने वाले हैं। कास्ट में और बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं जहाँ एक कहानी अनाउंस होते सारे दिशा के फैंस उत्सुक दिखे उनके एक हॉलीवुड जब भी को लेकर के बाकी चर्चा उतरी सफाई का।

0: आजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खा बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदरी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: ला भी रहे थे।
1: क्या बात है?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: हाँ। मैं तो चली, तू बोलता रह।
1: अरे क्लास तो पीती रहा, सुन।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आ चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर।
5: किसरे किससे हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक एंड मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं ओटी प्लेटफॉर्म की, जहाँ ओटी प्लेटफॉर्म पर कुछ कहानियां जो स्ट्रीम की जा चुकी है जिनको लुत्फ आप उठा सकते हैं। तीसरी बेगम जो ओटी प्लेटफॉर्म की सोशल ड्रामा फिल्म जो पहले थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई, रक्तांचल का सीजन 3। ऐसे कहानी ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाता है जो कि पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर्स चाहते हैं कि तीसरे सीजन में क्या कुछ नए किस्से लेकर के आया है ये इस बार। वहीं बात करें तो यहाँ पे जो एक स्वीक जहाँ कुछ नए टाइटल सोजी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जहाँ और ड्रामा ड्रिवन ज्यादा नजर आ रही हैं बजाय कि रोमांचक और कुछ एक्शन। देखें ये इस बार का थ्रिल क्या धमाल मचाएगा ओटी प्लेटफॉर्म पर। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: to dance Basanti.
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर।
1: आंखों से आंखें
0: यार दोस्तों, यहाँ तुम बार का सीक्वल बिल्कुल लाने की तैयारियों में जुटा। तो भाई टू की बात करें जहाँ आलिया भट्ट का नाम भी इस कहानी से जुड़ चुका। सोम शाह की अगर बात की तो आलिया कास्टिंग कन्फर्म की और स्पेशल वर्ल्ड इसके लिए उनका हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी बात है। आलिया फिल्म में पिवोटल रोल निभाएंगे और उनकी प्रेजेंस सीक्वल की स्टोरी में मेजर ट्विस्ट के तौर पर दिख। आलिया की एंट्री होने के बाद इस ओरिजिनल और इमर्सिव वर्ल्ड के लिए फैंस उत्सुक हैं, जहाँ सोम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार ज्यादा काम करना अपने आप में बड़ी बात है। आलिया का मौका मिले जहाँ आदेश प्रसाद इस कहानी को रेडियो 2027 को ये कहानी सिल्वर स्क्रीन पर आए। बाकी चर्चाएं होती हैं इससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक
1: हिट डाउन।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: हाँ भाई तुरेंद्र, मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ। जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा। मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का

और इसकी रिलीजिंग को लेकर। जो इश्कनामा हाल फिलहाल रिलीज की गई है, एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी। बैकड्रॉप में पंजाब के निम्मा और नसीमा की मोहब्बत दिखाई गई। ट्रेलर में सरद मजहब दूरी और फैमिली प्रेशर के बीच पनपते प्यार को दिखाया गया, इसलिए टोन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल और कम। ट्रेलर में जय रंधावा का किरदार अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर देता है। वहीं कहानी में धमकियां, रोक टोक और इमोशनल सेपरेशन का एंगल भी रोमांस के साथ इंटेंस लुक में दिखाया गया। डायरेक्शन अरविंद खेरा ने किया, जबकि विवाह पर यानी कि इस वीकेंड रिलीज किया गया। देखते हैं शहनाज गिल और जय की ये जोड़ी कितनी पसंद करते हैं लोग और इस कहानी को कितना मिलता है प्यार। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे। आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जी गानी के साथ वेलकम बैक है मेरे शो में। यह अब हम बात करते हैं आदिल हुसैन और मंदिरा बेदी स्टार फिल्म मार्क्स मैन एंड मियाज़ाकी की कहानी के बारे में। चूंकि इमोशनल फैमिली रिलेशनशिप इस कहानी को ला रहे हैं, दोनों अपने सामान बांटने की बहस में उनकी पालतू बिल्ली यानी कि मियाज़ाकी पर झगड़ते हैं और यही तो है कहानी का इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहानी में प्यार, बिछड़े कन्वेंशन और छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स के जरिए हीलिंग की दिशा में जाती है यही कहानी। अब इस कहानी की अगर बात की जाए तो दोनों स्टार्स की कहानी की इस वीकेंड पर रिलीज की जा चुकी है। देखते हैं मंदिरा की जोड़ी को इनके कुछ डिफरेंट किरदार को लंबे अरसे बाद कितना ज्यादा पसंद किया जाने वाला है।

0: प्यार है इस खातर तेरा तक करे प्यार को ना, और सारी दुनिया में जाकी टोलिए तन्ना जाट बरगा मिलेगा यार है। दिन में सिपटा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जिसा देखा स्टार को ना, तेरा जिसा देखा स्टार को ना।
1: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
2: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। एक व्यक्ति की मदद ना ले।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया,
4: तुम महारानी है।

0: 89.6
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी।
3: इसने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो
4: आवारा।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सनामा का स्वैग सुनना ना भूले, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आपका
1: तुम चल गए
0: यूं ही फिसल गए आ आ आ
1: हाल कैसा है जनाब का
0: आपका।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों सिनेमा के कैलेंडर की, जहाँ सिनेमा के कैलेंडर में बात करेंगे बर्थडे गर्ल बॉलीवुड को। इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक का सफर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर तय किया। खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और नेचुरल एक्टिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और हर फिल्म के साथ खुद को एक और बेहतर साबित करने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कृति सैनन। जरा कृति सैनन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। बाकी इनके बारे में आज बहुत चर्चाएं करने वाला हूँ, सिनेमा के गलियारे से जुड़े किस्से कहानियां, बेहतरीन किरदार तो बेहतरीन कहानी। चर्चाएं करने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजाद
0: तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसको काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: बात है

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं हम कृति सेन, जॉन नोएडा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने के बाद साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू किया और फिर बॉलीवुड में एंट्री। हीरोपंती उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उनके अपोजिट टाइगर श्रॉफ नजर आए और बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला और बॉलीवुड सफर नए मुकाम पर पहुंच गया। कृति ने हर जेनर में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, मिमी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जी की टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस फिल्म में उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उनकी मेहनत और एक्टिंग टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा

0: बॉयफ्रेंड हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सुनो
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89 पे है।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे जमा हो चका चक फिर लो पान चबा। लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

0: गोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे किनारे भाला। ओ खई के पहन बनारस बहला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पहन बनारस अकल का ताला।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें कृति सेन की, जहाँ कृति ने एक्टिंग के साथ हैं, उन्होंने ब्यूटी और वेलनेस बिजनेस में भी कदम रखा और अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया। सिंपलिसिटी, फिटनेस, ग्राउंडेड पर्सनालिटी की वजह से वो यूथ के बीच काफी पॉपुलर है। आज कृति सेन बॉलीवुड की दोनों तरह की फिल्मों में अपने अलग पहचान बना चुकी हैं। आप बताइए कृति की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? हीरो बंदी, बरेली बर्फी, लुका छुपी या फिर मिमी? जहाँ मिमी के लिए उनकी अच्छी खासी चर्चिंग, लेकिन आज नहीं आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम करूँ निर्वाते। तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुरानी हवेली के खजाने का राज जानता है।
1: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
0: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
1: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
0: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। माही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिमी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई और ये खबर सब। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है। बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

जिस उम्र में कई क्रिकेटर्स उस उम्र में सूर्य कुमार यादव अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले थे। साल था 2021। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

हर मैच में इंपैक्ट और हर इनिंग्स के साथ फैंस का प्यार बढ़ता गया। अब दुनिया के बॉलर्स उनके शॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि शॉट्स ट्रेडिशनल क्रिकेट लॉजिक फॉलो ही नहीं करते थे और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे डेंजरस T20I बैट्समैन बनने वाले थे। और कैसे मिला उन्हें मिस्टर 360 का टाइटल, करेंगे इसके बारे में बात। मगर इस गाने 6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना।
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं, उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरेस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहा जाता था, लेकिन कुछ ही सालों में क्रिकेट वर्ल्ड को इंडिया का अपना मिस्टर 360 डिग्री मिल गया। स्वागत सिक्स पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंड आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 डिग्री ऑफ इंडिया यानी सूर्य कुमार यादव की। साल 2000 के नाम रहे, हर सीरीज में एक्सप्लोसिव बैटिंग, हर टूर्नामेंट में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, बॉलर यॉर्कर डाले तो रैंप शॉट, बॉलर शॉर्ट बॉल डाले तो अपर कट, फुल बॉल डाले तो स्कूप। ऐसा लगता था जैसे फील्ड पीसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्या दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बन गए। ये अचीवमेंट किसी इंडियन बैटर ने बहुत कम बार हासिल की थी। फैंस उनकी बैटिंग को एंटरटेनमेंट नहीं, मैजिक कहने लगे, कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया। लेकिन फिर एक और चैलेंज आया, ODI वर्ल्ड कप 2023, जहां सूर्या अपना बेस्ट वर्जन नहीं दिखा पाए।

ओए मुन्ना, मैं तुझे सब निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

क्रिकेट में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कैचेस विन मैचेस, कभी कहता है। और 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा ही एक कैच पकड़ा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। जून 2024, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच लास्ट ओवर्स में पहुंच चुका था। साउथ अफ्रीका इंडियन फैन की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। तब डेविड मिलर ने एक बड़ा शॉट खेला, बॉल बाउंड्री के पार जाती हुई लग रही थी और उसी वक्त बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने बॉल को कैच किया, छाला बाउंड्री के बाहर जाने से पहले दोबारा अंदर आकर कैच कंप्लीट कर दिया। पूरा स्टेडियम शॉक में था, कमेंटेटर्स चीख पड़े और कुछ ही देर बाद इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये कैच किया गया। आज सूर्य कुमार यादव की स्टोरी सिर्फ रन्स की स्टोरी नहीं है, ये पेशेंस की स्टोरी है। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट लेट मिलता है। क्योंकि स्काई ने प्रूव किया, अगर टैलेंट के साथ भी देर लगाए आपका वक्त ज़रूर आता है। और जब वो वक्त आता है तो पूरी दुनिया आपको सूर्य कुमार यादव के नाम से जानती है। तो ये थी कहानी सूर्य कुमार यादव यानी स्काई की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सर तुम मेरे ATM हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

यस गाने के साथ एंड यू आर लिस्टिंग गीत। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो अनाउंसमेंट्स या बिग प्रॉमिसेस से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक किसान के घर से। सोचिए वो गांव जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का आइडिया ही नहीं, दोनों टाइट होती हैं, और एक बच्चा जो 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस बट बिकॉज लाइफ ने उसको पहले ही टेस्ट पे डाल दिया। बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ उस बच्चे को समझ आ गया कि सर्वाइवल और सक्सेस दोनों बनाई जाती है। इंग्लिश नहीं आती मतलब काफी लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन ये स्ट्रगल ही उसका बिगेस्ट टीचर बन जाता है। हाई एंड स्कूल्स, कोचिंग, फैंसी एनवायरमेंट, ये सब इस किड के पास नहीं कि क्यूरियोसिटी और सीखने की नीड। IIT के लिए पोस्टल कोचिंग तक इन्होंने खुद ही अरेंज की, और ये वो फेज था जब लोग कंफर्ट जोन में सेटल होकर बैठते हैं, वो स्ट्रगल से गुजरना भी नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जाए अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और मिस्टेक से कैसे सीखा जाए, और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप की तरफ ट्राई किया एंड दैट फर्स्ट स्टार्टअप फेल भी हो गया था। सब कहते थे ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस फेलियर ने उनको कुछ एंटरप्रेन्योर्स को मिसिंग लगते हैं, और वही फाउंडेशनल लेसंस बैड लेट डिसीजंस को शेप करते हैं, इवन जो उसको आज इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक ले गया। पर अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को फील कर रहे हैं, नाम प्रोडक्ट। दिस इज रियलिटी बिफोर फेम, नॉट पॉलिश्ड, नॉट सिंप्लीफाइड, नॉट ट्रू स्ट्रगल। अभी हम यहाँ पर गाना सुनते हैं, गाने के बाद बताऊंगी कैसे ही टर्न जीरो रिसोर्सेज इनटू एन अपॉर्चुनिटी मैप एंड स्टार्टिंग बिल्डिंग समथिंग दैट टुडे इनटू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ आपके साथ गी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है, इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे। आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
2: आपकी जिंदगी की कहानी,
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अगर आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो बता देती हूँ, आज हम किसी चमकदार सक्सेस स्टोरी की बात नहीं कर रहे, आज हम उस फेस की बात कर रहे हैं जहाँ लाइफ क्वाइट। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एक फार्मर के बेटे की कहानी तक हम पहुँचे थे, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से अलग हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है उस फेज में जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो साल होते हैं जहाँ कुछ हैवी हो जाता है, प्रॉब्लम्स पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फिट इन करना, नई जगह, नया लगेज और साथ में एक साइलेंट कंपैरिजन। बोलने से पहले सोचना पड़ता है और जब बोलने में डिले होता है तो लोग सुनना बंद कर कम करता गया। नॉट बिकॉज आइडियाज नहीं थे बट बिकॉज एक्सप्लेन करना एग्जॉस्टिंग लगने लगा था। और इस फेज में इस कहानी का हीरो क्लासरूम में लाउड नहीं था, ग्रुप डिस्कशंस में लीड नहीं करता था बट ऑब्जर्व करता था, लोग क्या आगे बढ़ता है। और बिजनेस अनप्लग में हम जितने भी टाइकून्स की बात कर चुके हैं, मैंने अक्सर एक चीज नोट की है, वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे, बोलने पर बिलीव नहीं करते थे। जब आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते तो लर्निंग, सेल्फ लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है, बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट, नो ग्लैमर। फेलियर भी आए, एफर्ट किए लेकिन आउटकम्स नहीं मिले। और यहाँ फेलियर ड्रामेटिक नहीं होते, बस एक रियलाइजेशन होता है ये अप्रोच काम नहीं कर रही है। यहीं पे एक शिफ्ट होता है को समझने की कोशिश, वेयर एग्जैक्टली आई एम मिसिंग समथिंग, वेयर आई एम नॉट सीइंग क्लियरली। और यहीं से डिवेलप होती है एक हैबिट प्रॉब्लम को रूट से देखने की। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रही, ब्रांड का जिक्र भी नहीं, सोच बन रही है क्योंकि अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी कि कैसे ये थिंकिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से टकराती है और कैसे वहीं से एक बिजनेस आइडिया जन्म लेता है। सो स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यह होगी
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन कॉन्टैक्ट फोटो सब में हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो, और ईमेल्स लाइक योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

अगेन यू आर लिसनिंग टू बिजनेस आर्ट। अभी अभी जुड़े हैं तो अब वो मोमेंट है जहां सस्पेंस खत्म होने वाला है। जिस फार्मर के बेटे की हम बात कर रहे थे, जिसने अर्ली एज में सेपरेशन देखा, लगेज बैरियर्स झेले और क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रो, यस ग्रो, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक। बट बिफोर ग्रो बिकम एन ऐप ऑन मिलियंस ऑफ फोन्स, ललित वॉज जस्ट अ बॉय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली नहीं था। 7 साल की उम्र, उस एज में जब बच्चे सिर्फ रूटीन फॉलो करते हैं, स्कूल, होम, प्ले, उस एज में ललित अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। विलेज बैकग्राउंड, नो इंग्लिश मीडियम स्कूल, नो एक्सपोजर। जब आप लगेज नहीं बोल पाते और जब कॉन्फिडेंस बोरोड हो तो आप ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। टाइम के साथ एडुकेशन ने डायरेक्शन ली, IIT रुड़की, देन कॉर्पोरेट एक्सपोजर। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक चीज नोटिस करना है, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इंफॉर्मेशनल इमिडिएटिंग है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए रखा गया है और यहीं से आता है ग्रो का सीड। नॉट हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू सिंप्लीफाई मनी। ग्रो वॉज डिडंट अंडरस्टैंड फाइनेंस अर्लियर, देयर मस्ट बी अ मिलियन लाइक मी। आज ग्रो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, इट हैज ओवर 40 मिलियन यूजर्स, मैनेज लैक्स ऑफ करोड़ इन एसेट्स एंड ऑपरेट्स विद अ वैल्यूएशन रनिंग इनटू बिलियन। सेल्फ इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड फाउंडर्स में से गिने जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये नंबर्स इनकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करता। इंटरव्यूज देखो, टोन काम है, वर्ड मेजर्ड है, जैसे वो इंसान अभी भी सोचता है बचपन में बनी थी। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

छोटे से गांव के किसान के बेटे थे। अपनी स्टडीज पूरी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, कहानी शुरू होती है। आईआईटी में पढ़ते हुए ललित ने ये ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है। बैंक्स, ब्रोकर, पेपर वर्क सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वही इन्होंने नहीं आ रहा है तो लाखों लोग कैसे समझेंगे। कैंपस लाइफ में इन्होंने छोटे छोटे साइड प्रोजेक्ट्स किए, अपने दोस्तों को गाइड किया, फीडबैक लिया। स्लोली इनका ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट शार्पन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद बहुत डीपली देखा कि इंडिया में इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। लोग ऑनलाइन इन्वेस्टिंग से डरते हैं, प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। ललित ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिंपल, सेफ और समझने में आए। इनके साथ मिलकर टीम बनाई। फर्स्ट ऑफिस मिनिमल था, व्हाइट बोर्ड, चाय, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम स्मॉल थी बट सुपर फोकस्ड। रूल सिंपल, यूजर पहले, प्रोडक्ट सेकंड, और सब फास्ट डिसीजन में बिलीव करते थे। फिर इन पर डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, इंटरफेस क्लीन। सबसे पहले दोस्तों और अर्ली यूजर्स को टेस्ट किया, फीडबैक लिया और प्रोडक्ट इम्प्रूव किए, बग्स फिक्स किए, कंफ्यूजिंग स्टेप्स सिंप्लीफाई किए। और देखी थी, इन्वेस्टर हेजिटेट थे क्योंकि स्मॉल टीम, अननोन फाउंडर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स पहले से थे। ललित ने प्रोटोटाइप दिखाया, अर्ली यूजर्स स्टोरी शेयर की और ट्रांसपेरेंट होने के बाद प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज शुरू हुआ। ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे धीरे आई, रेफरल प्रोग्राम्स, कॉन्टेंट बेस्ड एडुकेशन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया। ऐप क्रैश फ्री, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, कस्टमर से फीडबैक लेते थे और टीम हमेशा स्मॉल बट हाईली एफिशिएंट रही। आज ग्रो मिलियन ऑफ यूजर्स के लिए वन स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIP, रिटायरमेंट प्लान्स, वैल्यूएशन बिलियंस में है। वही बच्चा जो गांव में यूजर्स के पैसे और डिसीजन मैनेज कर रहा है, काम, मेजर डिसीजन, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट, वही हैबिट चाइल्डहुड से बनी थी और ग्रो की फाउंडेशन बनी। स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे, नेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मेरी खत्म नहीं होती बल्कि सीख देकर जाती है। ग्रो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। हर फीचर, हर प्रोडक्ट डिसीजन, हर यूजर फीडबैक सब केयरफुली टेस्टेड ट्विक किया गया था और स्टेप बाय स्टेप स्केल हुआ। ऐसा नहीं किया बल्कि इन्होंने देखा कि यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या समझ पाते हैं और क्या मिस कर देते हैं, और इसी ऑब्जर्वेशन ने प्लेटफॉर्म को सिंपल, रिलायबल और ट्रस्टेड बनाया। आज ग्रो सिर्फ नंबर्स और वैल्यूएशन का ट्रस्ट बिल्डिंग और क्लैरिटी की कहानी है। यूजर्स फील करते हैं कि प्लेटफॉर्म इन्हें समझता है, गाइड करता है और उनके पैसे सेफ है। और सबसे खास बात, ये काम, मेजर्ड अप्रोच, डिसिप्लिन और पेशेंस बिलियन डॉलर स्केल तक पहुंच चुकी है। और कहानी हमें क्या सिखाती है, आइडिया सिर्फ थॉट नहीं है, एग्जीक्यूशन और फीडबैक लूप बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करो, सिंप्लिसिटी चूज करो। ग्रोथ इंस्टेंट नहीं आती बट कंसिस्टेंट थॉटफुल स्टेप चेंज लाते हैं, लेकिन रियल फील देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी एक थॉट के साथ, बिग थिंग्स ग्रो क्वाइटली स्टेप बाय स्टेप विद ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। तो आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लिफ्ट कुछ हटके।

0: आज उसमें भी जहर गुल्ला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। कर दुलार दे इस धरती को उसकी खोई मुस्कान, फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूट, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके

सोचिए एक गांव जहां कल तक बच्चे हंसते थे, खेलते थे और सुबह उठते और फिर एक रात।

और कुछ खामोशी में। E9.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। कल्चर कारवा की आज की कहानी आपको लेकर जा रही है एक ऐसे गांव जो सिर्फ कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के सीने में बसा एक गांव जो आज सिर्फ खंडर है। कहा जाता है ये गांव 13th सेंचुरी में बसा था पालीवाल ब्राह्मिन्स के द्वारा। बात की जाए पालीवाल ब्राह्मिन्स की, कहा जाता है पालीवाल सिर्फ पंडित नहीं थे, फार्मर्स और प्लानर्स भी थे। अगर इस गांव की बात की जाए तो कहा जाता था ये गांव अपने टाइम से भी काफी आगे था। जैसे थारा में पानी था और इतना ही नहीं यहाँ एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड चैनल्स और ऐसे घर बने थे जो गर्मी में ठंडे रहते थे। वो कहा है कि जिन्होंने रेगिस्तान को जिंदा रखा उनका शहर ही जिंदा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अब दूर तक जाएगा वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉम्बे दिए बॉम्बे दिए मोमबत्ती है
1: आज कर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया। मुझे पता ही
2: तबेर भी बन और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
4: किसी भी अनजान नंबर या लालच पर मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.0। बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजली और कल्चर कारवा का आज का सफर हमें लेकर जा रहा है कुलधरा की उस रात की कहानी। कहते हैं वो रात सबसे मशहूर कहानी लिखी गई। कहानी कहती है जैसलमेर का एक अत्याचारी दीवान पर बुरी नजर डाल बैठा। उस दीवान ने सबको हुक्म दिया, या तो शादी होगी या फिर पूरा गांव सजा भुगतेगा। पर उस रात गांव वालों ने एक फैसला लिया चले जाने का।

उसी रात खाली हो गई, सब कुछ छोड़कर चली गई। पर जाने से पहले एक चीज छोड़कर, बद्दुआ। कुलधरा की वो रात की कहानी एक बद्दुआ और रहस्य में घूमती है। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए 0.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहे रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी, बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो, याद रखो रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर चेंजली और कल्चर कारवा का आज का सफर घूम रहा है कुलधरा के रहस्य की तरफ। बद्दुआ और रहस्य बसेगा उसका विनाश होगा। कहा जाता है ये गांव बद्दुआ और रहस्य से भरा है। तब से आज तक कुलधरा का भी

लोग कहते हैं रात को आवाजें आती हैं, परछाई दिखती है। यहाँ भूत नहीं, यहाँ अधूरी जिंदगी।

बद्दुआओं से भरा ये गांव क्या कभी बस सका या आज भी खाली है। और आखिर हिस्ट्री के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बड़ा हूँ मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ, ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है

89.67 पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजली और कुलधरा की ये कहानी हमें हिस्ट्री की तरफ लेकर जाती है। कहा जाता है कि हिस्टोरियनली होने की वजह रही भयंकर सूखापन या फिर बहुत भारी लगान लगाना। कहा जाता है कि पानी की कमी भी एक रीजन हो सकती है, पर सवाल आज अब एक साथ एक ही रात में कैसे गए।

दिन में टूरिस्ट आते हैं और रात को सिर्फ कहानियां रह जाती हैं। कहा जाता है कि कुलधारा हमें डराता नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि जुल्म के आगे कभी कभी छोड़ देना हिम्मत होती है। तो ये थी कुलधारा की कहानी, मिटा नहीं बल्कि बस छुप गया। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कल्चर कारवा के सफर को यहीं खत्म करने का। कल फिर से मिलेंगे एक नए सफर के कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई, जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है। आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एमआई और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: को
1: बताइए
2: क्या तू मिट्टी का बंदा मैं तो प्यार।

गाइस व्हाट इज दिस हैपनिंग। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो मंडे है, ऊपर से गर्मी है, ऊपर से मौसम भाग कह रहा है कि आप सभी का रेडियो महारानी 9.6 पर मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडे आप सभी के साथ। मंडे की शाम है, आ चुका हूँ आप सभी के पास। और अब एक बात बदलना चाहूँगा, वो ये बात है कि देखो हमारे यहाँ इस जगह पर ही बारिश नहीं हो रही, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बरसात की खबरें आ रही हैं। कभी पहाड़ों पर बरसात हो रही है, कभी असम साइड बरसात हो रही है, कभी मुंबई पुणे गोवा हर जगह बारिश हो रही है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर को छोड़ के। बात कर रहे थे पहले, क्या वो सारा का सारा फरीदाबाद में आ गया है। खैर, इन सब के अलावा और भी बातें होंगी। जैसे अगर आप लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, मेरे शो में होती हैं ढेर सारी बातें, फरीदाबाद से लेके दिल्ली एनसीआर तक, दिल्ली इंडिया तक सारी बातें करेंगे। सावन ऑफिशियली शुरू हो चुका है और शादियों का सीजन भी आएगा फिर उसके बाद, मतलब बाद में आएगा वो, तो अभी श्राद्ध आएंगे, फिर उसके बाद नवरात्रे आएंगे, फिर शादियों का सीजन शुरू होएगा। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, क्योंकि मैंने आज पढ़ ही लिखा था कि आप लोग शादी में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, मगर उसमें खुशियां कोई और मनाता है, आप नहीं मना पाते, कैसे वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर इसी बीच आपने कुछ भी गपशप या फिर कोई भी फरीदाबाद की अपडेट है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। नंबर है एक हमारा सिंपल सा 9654, बस ये 4 नंबर याद रख लो 9654, उसके आगे एक हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, और व्हाट्सएप पर अगर आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए, आप सभी के लिए ब्रेक, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: जरूरत क्या है?
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद।
0: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
0: खाली थे?
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके।
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो अलोरी का।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर
0: ग्लास तो पीती जाए। सुन।

मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट ज़ेब्रा क्रॉस।

0: सड़क के किनारे हमें वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आई लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन, तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

ये था एक अमेजिंग सा मैशअप और इसी गाने के साथ स्वागत है सिक्स पर वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो क्या हो रहा है आजकल, कुछ नहीं हो रहा। फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब आसमान से कुछ नहीं हो रहा और मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश हो रही है। खैर मैं जो बात बोलिनो का इफेक्ट रहेगा उसकी वजह से बरसात कम होगी, बट किसी ने ये नहीं बताया कि दिल्ली एनसीआर में ही बरसात कम होगी, बाकी हर जगह मानसून अच्छे से आ रखा है, बारिश हो रही है। अब देखो हम इंसान क्या है, कठिनों का भंडारे कह सकते हैं, क्योंकि बारिश हो तो हमें दिक्कत हो जाती है, बारिश ना हो तो भी हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये जो बारिश नहीं हो रही इसके पीछे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हम लोग बस यही बोलेंगे है कि अब इधर भी आसमान से भी सावन शुरू हो जाए और बरसात आनी शुरू हो जाए और अगस्त हमारा थोड़ा सा वेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है, गीला गीला सा रहेगा मतलब आसमान में और नमी रहेगी थोड़ी सी, मौसम अच्छा ही है। और वैसे भी अभी कुछ ही दिनों में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो जितने भी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनको तो हैट्स ऑफ है, क्योंकि मैंने देखी वीडियोस लोगों की, लोग बहुत सारा जल लेकर आ रहे थे। एंड जो लोग अभी जाने वाले हैं अपर कृपा बनाए रखें। एंड इसी के साथ साथ अभी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अभी ये जो नमी वाले दिन है ना, कह रहे हैं ये और दिन देखने को नहीं मिलेंगे, कैसे कब कहाँ सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को मगर एक गाने के बाद। रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चलाता रही, और अगर आपके आसपास कहीं पर भी छींटे पड़ रहे हैं ना, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि हो रही है अभी बारिश बट यहाँ नहीं हो रही कहाँ हो रही है ये मुझे नहीं पता, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात मगर इस गाने के बाद महारानी पर।

0: प्यार का तो पता नहीं बांदर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास करें। मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए

कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, शेयर करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से। ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अर्ज होता है अर्ज कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस। इरशाद, अरे आगे खाली हो रही है, सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
2: ओके ओके।
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ।
0: आगे होगा, हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: हाँ हाँ, वैसे ही मैं तो चली, तू बोलता रह।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुने।

ये गाना मैं गाना चाहता हूँ दिल से, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। मतलब कहाँ जाएगा, कोई साउथ की तरफ जाओ, कोई नॉर्थ की तरफ जाओ, कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, तो उनको खींच के फरीदाबाद ले आओ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मौसम विभाग का तो कहना है कि अभी भी इस टाइम बाहर बारिश हो रही है, मगर बाहर क्या है माहौल ये आप सभी को पता है। एक वक्त हुआ करता था जब मौसम विभाग कहता था कि आज बारिश नहीं होगी और उस दिन बारिश हो जाती थी, और अब मौसम विभाग कह रहा आज बारिश नहीं होगी तो नहीं हुई। और जब कह रहे हैं, अभी मैं आज दिन में लोगों से बात कर रहा था और लोगों से बात करके मुझे पता चला कि हाँ सभी लोग इस टाइम इस उमस वाली गर्मी से परेशान है। आज 36-37 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा रहा था, जो फील हो रहा था कि 45 था, और इस मौसम में सबसे ज़्यादा तबीयत खराब होती है। अच्छा चले मौसम विभाग की बात करते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कल 90% चांस है बारिश होने का, यानी कि कल सुबह से आपको बारिश देखने को मिल जाएगी। सुबह 3-4 बजे होती रहेगी पूरे दिन भर चलेगी और शाम को ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो वक्त बताएगा कि कल कितनी बारिश होती है। और उनका कहना है कि अब ऐसा ही चलेगा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और बढ़ेगी। बट ये तो शायद पिछले हफ्ते के लिए भी कहा था

बारिश तो हुई नहीं, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए गाना चला सकता हूँ। तो गाना सुनिए और वापस आ गए। पैसा खर्च करना सही होता है, करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए साल 2021 का सबसे फेमस सॉन्ग ब्राउन मुंडे महारानी 89.6 पर।

0: शुरू राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चढ़ तीन बच्चे उठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी दही लेकर बैठ जाते हैं।

0: अर्जुन
1: क्या है?
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: ला लेते हैं?
0: कौन?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया, सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी।
1: हाँ। आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है। और
1: एक लाख तो पीती जाए। सुन।

0: क्या आपको मालूम है सिर्फ 2 महीने बचे हैं?
1: किस चीज के?
0: 2 महीने अक्टूबर आने के बचे हैं फिर ना ऑफिशियली। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आप लोगों को नहीं लगता कि शादियों के अंदर हम लोग कुछ ज्यादा ही खर्चा कर लेते हैं? क्योंकि अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा हूँ, उनका पोस्टर बड़ा अमेजिंग लगा मुझे। कहती हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर ही 20 लाख रुपए हवा में उड़ा देते हैं। अब ये उड़ते कैसे? देखो, सबसे पहली बात, हम लोग डीजे लगा और सजावट होती है, फोटोस होती है, वेन्यू सेलेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें 2 दिन के लिए ही तो होती मैक्सिमम। अब सोचो एक वेन्यू आप लोग बुक कर रहे हो तो वो भी तो है, मतलब वेन्यू बुक करते हैं तो उसमें पैसे देने पड़े। खाने के ऊपर मान लेते हैं 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, वेन्यू के ऊपर 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, और जो एंटरटेनमेंट मीन्स अपना डीजे है और साथ में बग्गी घोड़ा सब कुछ मिला के 2 लाख रुपए, फोटोग्राफर्स आपको पता है आज की डेट में, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये तो इतना तो लगता ही है, और सजावट में भी 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट्स खरीदने पड़ते हैं, 3-4 लाख रुपए इधर भी लग जाते हैं। और इसमें खुश कौन होता है? जिसकी शादी हो रही है वो खुश होता है, आपको लगता है? बट मेनली खुश होते हैं 500-600 लोग जो मेहमान बन के आते हैं। फिर उसके बाद केटरर्स होते हैं और फोटोग्राफर्स होते हैं, बैंक्वेट ओनर होता है, डीजे वाला होता है, ये सब लोग खुश होते हैं। जिनकी शादी हो रही होती है वो कहाँ खुश है कि शादी ना सिर्फ 1 दिन की होती है। और इसमें आप लोग अपनी सेविंग्स को मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से खर्च मत कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपनी FD तोड़ देते हैं, और बहुत सारे ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है पॉइंट, लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है तो उसको खुल के एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी 100% सेविंग और 100% इन्वेस्टमेंट, 20% इन्वेस्टमेंट अपनी और सेविंग्स अपनी खर्च कीजिए और एंजॉय कीजिए। और शादियों का सीजन जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, गाने का नाम है वो अंत।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान।
1: उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सर्च नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आपको पता है, इस साल तक बात नहीं करी थी और इसके पीछे का रीजन बड़ा ही अटपटा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, आई एम द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैंने इस चीज के बारे में सोचा, मैंने कहा यार कोई नहीं है। फिर जब मैंने ये हेडलाइन पढ़ी कि 20 साल तक एक आदमी ने अपनी बीवी से बात नहीं करी, तो मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई होगी, लड़ाई हो गई होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये पूरा का पूरा मामला जापान का है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, और मतलब बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, और बच्चों ने ही इनकी फिर से बात कराई। एक्चुअली बच्चों ने इनकी मुलाकात उधर करवाई जहाँ पर ये पहली बार डेट पे गए थे, उस पार्क में। और ये लोग उस पार्क में मिले जा, लेडी ने जब पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसने बोला कि मुझे जलन होती थी। सीरियसली किस चीज़ से जलन? कि ये बच्चों से ज़्यादा प्यार कर रही, मतलब मेरी बीवी जो है वो मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यार कर रही है, तब तक बात नहीं करी। सोचो ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? मतलब ये सब सुन के मुझे तो बड़ी हंसी आई थी, बट ये वीडियो देखने के बाद उनके बच्चे रो रहे थे और मतलब वो लोग भी रो ही रहे थे, ऑब्वियसली बात है, इमोशनल हो जाता। सवाल करना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक, आप लोग कितने दिन बिना बात करे रह सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर से? और जितने भी मेल मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ ट्राई भी मत करना ये चीज़, आप लोगों को पता है फिर क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। और चलिए इसी के साथ साथ मुझे दी आप लोगों के लिए जो बैकग्राउंड में बज रहा है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। वापस आकर विक्रम 1 के लॉन्च के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई थी मगर जुगाड़ से ठीक हो गई थी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल भी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो। तो ना एक्सीडेंट FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रीटॉप से, बी सेफ बी अवेयर।

आप लोगों को तो याद ही होगा कि अभी 18 जुलाई के दिन क्या हुआ था। 18 जुलाई के दिन लॉन्च हुआ था विक्रम 1, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट। ये लॉन्च किया गया था और विक्रम 1 इसका नाम रखा गया था, विक्रम साराभाई के नाम पे इनका नाम रखा गया था। और बता दूं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। क्या दिक्कत आई? लेट शुरू हुआ था ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, लॉन्चिंग में 35 मिनट्स की देरी हो गई थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ये एक ऐसा रॉक फिर इसके जो सीईओ है पवन कुमार, इन्होंने सामने आके बताया कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और हमने वही किया जो हम लोग बचपन से करते आए हैं। अच्छा, घर में जब सिस्टम नहीं चलता, हमारा जो पीसी हम मान लेते हैंग हो जाता, हम लोग क्या करते हैं? ऑफ कर देना, ऑफ करके ऑन कर दे और चल जाता है। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया और फिर से ऑन किया, वो टेक्निकल प्रॉब्लम गायब हो गई थी। तो ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा मुझे, मैंने कहा लगा यार करते हैं। और ऑफिस में जब वो आईटी वाला इंजीनियर आता है या हम लोग बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी है, वो सबसे पहले आके यही तो करते हैं। आईटी वाला बंदा आएगा, सबसे पहले आके रिस्टार्ट कर देगा। मतलब यार इतना तो हमें भी पता है, रिस्टार्ट जब नहीं हो रहा उससे, उसके बाद ही तो हमने आईटी वाले को बुलाया होगा, बट ये लोग नहीं मानते। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते, बट इंडिया ने एक हिस्ट्री लॉन्च तो नहीं बोलूँगा मैं, हिस्टोरिकल लॉन्च किया है और विक्रम 1 के थ्रू, क्योंकि ट्रे में बना है और श्री हरिकोटा के थ्रू ये लॉन्च किया गया था। 3D प्रिंटेड इंजन है यूज हुआ है इसमें और 4 स्टेजेस के फ्यूल है इसमें। पहले 3 सॉलिड फ्यूल है, फिर उसके बाद लास्ट में लिक्विड फ्यूल पर चलेगा। ये नहीं करूँगा और एक गाने चलाऊंगा आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए, जाइए सजना केड़े पास से, जाइए सजना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

फॉल्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अच्छे। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपने

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। सड़क पे निकले सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोगों ने मार्वल्स की एंट मैन देखी है? अगर देखी है तो अच्छी बात है, आप लोग समझ जाओगे मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और अगर नहीं देखी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लॉज के बारे में बात करी, जिसमें वो लोग टाइम ट्रेवल करते हैं और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। और ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट एक आदमी करने की कोशिश कर रहा था और वो कुछ दिनों से लापता है, कुछ दिन भी नहीं लापता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक अमेरिकन लेबोरेटरी है, उसमें क्वांटम फिजिसिस्ट है और उनकी एज साल 2025 में से गायब हो रखे हैं, ऐसा उनके दोस्तों का कहना है। और दोस्तों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई उनके घर पे। जब उनके घर को खोलने की कोशिश की तो घर अंदर से बंद था, पर कुछ भी नहीं था। एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी, उनका वॉलेट था, कुछ उनके ज़रूरत के सामान थे और हाथ से लिखी हुई उनकी जर्नल बुक मिली। बट द थिंग इज, वो पता है क्या कोशिश कर रहे थे कि मैं एक जगह से रहते हुए दूसरी जगह पे दो जगह अवेलेबल हो सकता हूँ, लाइक वो एक बार मेरे साथ भी बैठ सकते हैं और सेम टू सेम आपकी गाड़ी में भी बैठे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसे। बट इस बंदे ने पूरी कोशिश की, रिसर्च करी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के साथ, और उसके बाद ये गायब हुए हैं और घर अंदर से बंद था। सोचो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, चलिए भगवान जाने वो चीज़। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या, आशा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक, ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉटल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बादशाह।
1: Let's go.
2: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में किसने जीते मैचेस, ये तो शायद मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने 3-0 से पूरी सीरीज जीत ली है। और यहाँ पर क्रिटिसाइज करना, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, जिम्बाब्वे के साथ ये मैच था और पहला मैच इंडिया जीती, दूसरा मैच भी इंडिया जीती, तीसरे मैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कमाल कर दिया भाई इस लड़के ने, 49 बॉल्स में 81 रन बनाए और यहाँ पर ये 100 भी कर देता लड़का, बट आउट हो गया। चलिए, वो तो आउट होना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर इंडिया के एक करनी

बॉलर का नाम है वन एंड ओनली यादव, मतलब नया नया लड़का आया मयंक यादव, और इस बंदे ने जो बॉलिंग डाल के दिखाई है ना, अमेजिंग, मतलब सीरियसली अमेजिंग, और काफ़ी यार। बट मुझे एक चीज़ का डाउट होता है कि यार जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, और जब इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच हुआ था तब भी जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं खिलाया गया था लास्ट वाले ओडीआई में। और लोग पता है क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जिम्बाब्वे जैसी टीम से तो कोई भी जीत जाए, बट जिम्बाब्वे एक टाइम पर वो टीम हुआ करती थी जब टीम इंडिया को उसने बहुत कम रन पे ऑलमोस्ट समेट दिया था, वो तो शुक्र हो किसका, कपिल देव की, याद है ना 83 वाली मैच देखा नहीं आपने, मतलब 83 में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए ये तो मैचों के बारे में बात तो रहेगी, मगर हाँ अभी लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में खिलाना चाहिए, कौन कह रहा है हो, और इस पर का नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सभी को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अब इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वैभव सूर्यवंशी, ये लड़का हर जगह छाया हुआ है। स्वागत है आप सभी का रेडियो मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। शाम हो रखी है और अभी मैं वैभव सूर्यवंशी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर ना नजर हर किसी की है। और यहाँ पर हमारे एक पूर्व क्रिकेटर है जिनका नाम होता है फारूक इंजीनियर, इन्होंने बोला देखो 2027 वन डे वर्ल्ड कप, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ वर्ल्ड कप ODI वाला, तो कह रहे हैं इसमें सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ओपनिंग करे ये लड़का रोहित, जो क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के में ना पेशेंस की कमी है, जो मुझे लगता है। अब इस पर काफ़ी सारे लोग सहमत हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग असहमति जताएंगे, बट इनका ये कहना है कि देखो मुझे, अब मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो फारूक इंजीनियर की है। शुभमन गिल इस टाइम टीम के सबसे बेस्ट बल्लेबाज है, इसलिए उन्हें ना चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर तो आप सभी को पता है वन एंड ओनली किंग कोहली आते हैं, तो ओपनिंग कौन करेगा ब्रो? ओपनिंग करेंगे सूर्यवंशी। बट देखो ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल बातें हैं, और क्या ये सच में होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और साल 2027 में कितना ही टाइम रह गया है, चार ही तो महीने रह गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने 7 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। और ये जो क्रिकेट में अभी टीम इंडिया की हार हुई है इंग्लैंड के साथ, उससे पहले आयरलैंड के साथ, आयरलैंड थी ना टीम, हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उभरूंगा धीरे धीरे उभरूंगा, चलिए वो तो वक्त लगेगा उसमें। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चलाऊंगा। गाने का नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर हाँ गाना मिक्स मैशअप है आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: भी बार, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें,
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत से बचे, हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6 FM।

क्या आप लोगों को मालूम है आज पलवल साइड बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद से टच हो रहा है वहां नहीं, उससे थोड़ी सी और पलवल की तरफ जाओगे तो वहां बारिश हुई थी, और वो तेज वाली बारिश भी नहीं बट हाँ हुई थी। और मुझे क्या, मैं बस यही बोलूंगा कि दिल्ली एनसीआर से क्या नफरत है कि पूरे दिल्ली एनसीआर को कम से कम 2 हफ्ते से सूखा रखा हुआ है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं अभी बात करना चाहता हूं वो बारिश महीना है, और बारिश जब होती है फिर पानी जमा होता है, जल भराव होता है, तो फिर मच्छर पनपते हैं, मच्छर अंडे देते हैं, और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सारी बीमारियां आती है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, मलेरिया के केसेस आने शुरू हो गए हैं, तो आप लोग बस एक चीज कर सकते हैं, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। और अगर डेंगू मच्छरों की बात करें तो ये मच्छर साफ पानी में अपना, छत पर अगर कोई टायर पड़ा है या फिर कोई गमला है या फिर अगर कूलर पड़ा है, कूलर के अंदर पानी ना जमा हो, इसको चेक करते रहिए रेगुलरली, हर दूसरे दिन चेक करते रहिए, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है उसको पूरा का पूरा एक इवॉल्व होने में 9 दिनों का टाइम, आप लोगों को कम से कम 5 दिन में चेंज करते रहना, चेक करते रहना है कि कहीं पानी जमा तो नहीं हुआ। वैसे पानी जमा भी होगा कैसे, क्योंकि फरीदाबाद में तो बारिश ही नहीं हो रही है, बट स्टिल आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुन, उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना तलविंदर की आवाज में कातिलाना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
1: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद।
0: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा।
0: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
1: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा कानून के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, 22 रुपया। अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेड एफएम कुछ हटके।

0: शाम होती है ना तो मुझे दो चीजें याद आती है, एक तो पहली चीज खाना और दूसरी चीज के मेरा जाने का वक्त हो चुका है। मगर जाने से पहले मेरे साथ स्टूडियो में इस टाइम मौजूद है आपकी फेवरेट आरजे गीत इन द हाउस।
1: मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे अच्छा लगा यार तुमने फेवरेट आरजे कहा।
0: हाँ, उन लोगों की फेवरेट होगी, मेरे नहीं है। तो चलिए अभी आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आरजे गीत आज वक्त से पहले आ गई है। वैसे 15-20 मिनट बचे, 15 मिनट बचे होंगे। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आज का दिन कैसा गया।
1: आज का दिन बहुत अच्छा गया और बाकी तो शो में पता लगने वाला है।
0: बाकी शो में पता लगने वाला है और शो में लोगों का दिन और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए गीत आ चुकी है। तो गीत यहाँ मैं इजाजत लेता हूँ लोगों से, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो आज मतलब लोगों का दिन अच्छा कर दो क्योंकि मंडे है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मंडे को लोग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल भी फील करते हैं, तो चलिए आज का दिन उनका अच्छा बनाया जाए।
0: उन लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है जो शाम को आते हैं, उनके लिए कहाँ स्ट्रेसफुल होगा। मेरा निशाना तुम्हारे ऊपर था। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना 9.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: मुझाए
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी एक

0: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क, कि हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी। शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी सी, दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें, खामोशी, और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पह, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सब इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती हैं, जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कहती हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो, और अगर तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें, धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है, खींच लेता है, ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है, वो मुसाफिर ही खुली धूप का शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था, तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग हमारी दुनिया में कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं, और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे थे और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंस साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना। और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, बैंकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां गीत, और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात रात को अक्सर वो ख्याल वापस आते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में

खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल की किस चाहती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त ना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिब की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना। चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्कबाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वालीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ, पाँव में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल के धर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती हैं, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम में गुल मेरे आन, दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है और शायद इसीलिए इंसान इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मैं।
1: सदा सुरक्षित रहो और महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वाली गीत और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआमोशी भी लिखती हैं। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी थी। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब बजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता। वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है जल तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी। ये बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो रात के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागती। वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजिया। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सुन लो वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई shaadi.com का, उस पर क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन और माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाले गीत परवीन शाकिर की बात हो रही। सूरत है ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाते, से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता हो। मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है, इश्क हमेशा सच बस एक खुशबू बनकर रह जाता है, जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: नेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

में आप किशोरदा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोरदा की आवाज नहीं है, लेकिन है। जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, वहां इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो, लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं उसी मोहब्बत की। ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोरदा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं, जो किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया। किशोरदा और मधुबाला गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस रीयूज RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है, बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6। क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मौत। जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा दास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात गल गई। दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है, इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे। आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
2: आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बस।
1: रफी साहब की आवाज में है ये गाना, थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला लेकिन राह से अंत हुआ। वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, यही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं। एक हंस करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे। उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चदुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया। और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले ले हेलमेट।
2: और महंगा खतरा भाई, हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहां एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर आता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते, वो पीछे रखना पड़ा। लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यक्षन में ही नहीं है,
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाए जाते हैं जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है, लेकिन अपनी हर कस्म को निभाया। मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लाभी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दाने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, प्राखरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोरदा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: ना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ एक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: लेकिन

और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है और एक बहुत इश्क बाजियां शो है। और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है और लोग कहते हैं रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने उस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो। दिया गल्ला में फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेड एफएम कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पिन कोड और सीवीवी शेयर ना करें। एटीएम बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: कपड़े लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी तो।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। इतने जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां, और सेगमेंट है जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं, टॉक्सिक साबित हो जाते हैं, और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है, लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं ये पता लगा सकते हैं, तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है। और सबसे पहली बात पता है क्या है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, खैर कम हो जाए, लेकिन तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ते के लिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं।

आहिस्ता है और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है है कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने मोहब्बत करते हैं उस पर भरोसा बनाए रखिए और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। नींव होती है यकीन और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है तो के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं नीचे भी, ये भाई।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां।

कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहे। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन, और साथ ही साथ उसको भी आप फिल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ, आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनित में।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो, फिर साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का गेम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का।
0: गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर,
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप।
5: पहले डिजिटली सेफ रहो, फिशिंग हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, मेरे दामन में आती है, कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निंदगियां, आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। XFM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोड़ने बाबा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ वो पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है कर खुद का, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के देखा बंद रख आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आज पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: व्हील वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: स्पेशल ऑफर गेट एक्स वाई जेड ब्रांड क्लोथ्स वर्थ रुपीज 5,999 एंड जस्ट रुपीज 599 क्लिक ऑन द लिंक नाउ
1: हेलो जरा रखो थोड़ी समझदारी सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी फर्जी वेबसाइट से बचो साइबर अपराधियों के जाल से बचो वरना होगी बहुत परेशानी
2: जनरेट में जारी।

0: चालान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं, इस ट्रेफा से थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एमआई और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही या होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया, डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए। सफर

0: लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की इच्छा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: फील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है, कुछ कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप्स
3: पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, याहो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है, कुछ को मिल जा घुट कर रह जाती है। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था, और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
1: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डर,
0: कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
1: आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मॉनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक है।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तूसी भी हेलमेट पाया।
0: मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें एक बने, नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारी किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार,
1: मेरे सामने वाली खिड़की उड़ा रहता,
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार।
1: अपना दिल
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात भर।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 0.6 FM।

0: I hate water wasting रे। जा जाके टंकी बंद कर।
1: हाँ, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस रीयू है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझा। प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है, इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं नीचे भी, ये भाई।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए।
2: न्यू महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting.

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: तो याद दिला दे उसकी नानी, आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारोशना, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, लाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवकूफ
2: डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन की लामत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंसा तुम्हें सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट एक सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी। सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो अरूर से 89.6 FM कुछ हटके।

है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। नहीं छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लाप हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। पापा के सवालों में सत्ते से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान लगती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर, अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: गानों की मस्ती में जुमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6। ओ
4: मेरो बालम खाने दाद चला वे जिप सी, ओ मेरो बालम

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सर भाई, हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी रहेगी, पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुका।
3: रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरा जहां जो तुझको मैंने पा लिया, वो वो वो वो वो वो वो ला ला ला ला।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: क्या
4: तुम मचल गए हो?

0: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम वाले नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया। हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल
0: है। नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश
0: का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: वादा है, एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो
1: था। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराइए।
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता हासिल ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता ही हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: फूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दीवाना क्या कह।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: एक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता है।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ बीत की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

के बदनाम और हुए मशहूर हम, अब सारी जिंदगी होंगे नहीं दूर हम। अरे आपस में ताक दिन होते ताकि रे जब से तू आँखों में झांकी।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए तार करूं।

सजदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: आपकी जिंदगी बचाए ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गुमुराया मारे कील गुमुराया उड़े प्राणा पड़सी उल्टा बोले पत्थर सिरा कूटे गुमुराया मारे कील गुमुराया उड़े पारा पड़सी।

0: सुनना
1: जिन्हें वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: चलना युड़ी साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: दिल मिल के
1: चल। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझ आए उसी की मची धूम आ जो समझ आए
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: क्राइम से जा
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: अनुदान की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: कैसे?
1: बेहतर था। आजकल बगैर शराब के मधुशैना सीखी है। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मैम जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ व्हील्स ऑफ होप और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: नहीं कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन।
1: खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम वाले नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया। हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते हो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश
0: का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बच
1: तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा सा
2: है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है, हमारी लाइफ में खटारा जिस साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता के आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहा

0: चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई?
3: वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ।
0: धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। द्वारा जनहित में जारी।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक या बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सुन रहे हैं क्रिस। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही सन्ने कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में भी संसार का नियम है।

0: ऐसा पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम है और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया, मन करेगा तो करेगा पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, मैं तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रस गान का आरंभ यहीं से करते हैं। तारों करें सोई।

करे प्यार करे सोई मोय भावे, ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक ऐसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

0: जावत
1: जे जे मुख जोवत है मेरे।

मोह सिंधु की धारा काढ़ दया कर कर्म ही पारा रो। और मैं डूबता जा रहा हूं इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे मुझे पार करो। हो अति दीन महादुख पावत लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें? ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, निरस में नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो धाम में रहना है, लेकिन धाम में कैसे रहना है? साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभपूर्वक तीर्थ में रहे। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। की है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहे। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेदते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, संपत्ति